0: भारत में नए मामले सामने आते रहे हैं। इससे पहले इसके दुनिया भर में कुल मिलाकर 500 से भी कम मामले दर्ज किए गए थे। इस आउटब्रेक ने शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। अब ये उन जगहों पर भी पाया जा रहा है जहां पहले ये बहुत कम देखा जाता था। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंट के मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनास्तासियोस ताउसिस कहते हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में और मामले सामने आएंगे। हम इसे दुनिया भर में देखेंगे। जब ये संक्रमण होता है तो होता क्या है? अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले स्टीव कोस्टारिका में अपने होटल के पास एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग में अपने बेटे के साथ घंटों तक वाटर स्लाइड पर एंजॉय कर रहे थे, तभी जॉर्डन को सिर दर्द होने लगा। घर लौटने के बाद दर्द और बढ़ गया और जॉर्डन को उल्टियां होने लगी। उसके माता पिता उसे पास के अस्पताल ले गए। वहां जॉर्डन को हेलुसिनेशन होने लगा। उसने बताया कि उसे छत पर कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टीव याद करते हैं कि वो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम कौन हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे ये भी पता था कि वो कौन है। स्टीव बताते हैं कि स्विमिंग के 7.5 दिन बाद ही उसकी जान चली गई। इससे पहले उसे कोई समस्या नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ था। जॉर्डन की मौत प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एनसेफ्लाइटिस यानी PAM से हुई, जो नेगलेरिया फाउलेरी नामक जीवाणु से होने वाला मस्तिष्क संक्रमण है। PAM के कई पीड़ितों की तरह जॉर्डन को भी शुरुआत में मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार समझा गया था, क्योंकि शुरुआती चरणों में इन दोनों बीमारियों के लक्षण एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। जब तक डॉक्टरों ने इस बात को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण ने उसके मस्तिष्क में गंभीर सूजन पैदा कर दी थी। लेकिन ये अमीबा नई जगहों पर क्यों मिल रहा है? जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ में 2025 में छपी एक समीक्षा के मुताबिक 1962 और 2023 के बीच दुनिया भर में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के 488 मामले सामने आए। पिछले 15 सालों में अमेरिका के ठंडे उत्तरी राज्यों जैसे मिनेसोटा में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले साल स्लोवाकिया में नेगलेरिया फाउलेरी संक्रमण का पहला कन्फर्म मामला दर्ज किया गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से झीलों और तालाबों का तापमान बढ़ने से अमीबा उन क्षेत्रों में भी फैलने लगा है जो पहले इसके पनपने के लिए बहुत ठंडे थे। अब एक सवाल ये कि आखिर ये अमीबा दिमाग में घुसता कैसे है? आमतौर पर गर्म मीठे पानी में तैरते समय ये अमीबा नाक के जरिए शरीर में घुसता है, फिर नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचता है, फिर ब्रेन टिश्यूज को नुकसान पहुंचाकर सूजन पैदा करता है। तो हम इससे बचने के लिए कैसी सावधानियां बरतें? तो जानकारों का कहना है कि तैरते समय अपनी नाक बंद रखें या नोज क्लिप पहने। हॉट स्प्रिंग या झीलों में तैरते समय सिर को पानी के अंदर ले जाने से बचाएं। नाक को धोने के लिए केवल डिस्टिल या उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही यूज करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ों के मुकाबले बच्चों में नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। अब कुछ लक्षणों की बात भी कर लेते हैं। जो लक्षण शुरू में दिखते हैं वो कुछ यूं हैं, जैसे उल्टी, सिर में दर्द, बुखार या जी मिचलाना। जो लक्षण बाद में दिखते हैं वो कुछ यूं हैं, जैसे गर्दन में अकड़न, संशय, दौरे पड़ना, मतिभ्रम या फिर कोमा में जाना। और अगर आपको ऐसा कभी भी कुछ संशय हो या दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं या सलाह लें।
1: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਛਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
2: ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ क्या कुछ कर सकता है, ये शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो मच्छर होता है इसने लगभग सभी को कभी ना कभी काटा होगा। पर शायद आप में से कुछ लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा ही काटते हैं। BBC की लाइक कैथरीन लिखती हैं, मैं मच्छरों को जैसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, एक बात लगभग तय रहती है कि मच्छर मुझे जरूर काटेंगे। मगर मच्छर काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि निशान भी पड़ेंगे। कैथरीन कहती हैं कि मेरे दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मेरा खून बहुत मीठा है, इसलिए मच्छर मुझे ज्यादा काटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बात में थोड़ी

सच्चाई हो सकती है पर क्या वाकई ऐसा है असल में हमारे शरीर से कई तरह के जैविक संकेत निकलते हैं जैसे हमारी सांस और शरीर की गंध यही संकेत तय करते हैं कि मच्छर किस व्यक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे कुछ लोगों में ये संकेत इतने मजबूत होते हैं कि मच्छर उनकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आते हैं ऐसे ही तीन वजहों पर एक नजर डालते हैं पहली वजह सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती हैं। ये हमारे खून से इसलिए आकर्षित होती हैं क्योंकि इससे उन्हें प्रोटीन मिलता है जो अंडे विकसित करने में मददगार है मच्छर लगभग 10 मीटर की दूरी से ही अपने शिकार को पहचान सकते हैं वे अपनी देखने और सूंघने की क्षमता की मदद से ऐसा करते हैं टारगेट को पहचानने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी भूमिका निभाते हैं ये वही कण हैं जो हम अपने सांस और त्वचा के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं इंसान की सांस में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों को ये संकेत देती है कि आसपास कोई संभावित शिकार मौजूद है ये संकेत मिलते ही मच्छरों के शिकार खोजने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है और वो उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं एडल्ट्स को बच्चों की तुलना में मच्छर ज्यादा काटते हैं क्योंकि वो हवा में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मच्छर सिर्फ इंसानों की ओर ही आकर्षित नहीं होते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे सोर्सेस की ओर भी खींचे चले आते हैं इसी वजह से मच्छरों को फंसाने वाले जालों में ड्राई आइस और बोतलों में भरी कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है दूसरी वजह रिसर्च बताती है कि मच्छर किसी शरीर की गर्मी और नमी की ओर भी खींचे चले आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पैदा होने वाली गर्मी और नमी इस आकर्षण को और बढ़ा देती है इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को अन्य महिलाओं की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक मच्छर काटते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म और सांस लेने की गति बढ़ जाती है इससे शरीर ज्यादा गर्मी पैदा करता है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक स्वास्थ्य कीट विज्ञान के प्रोफेसर स्टीव लिंसे कहते हैं आपके शरीर के अंदर एक छोटी भट्टी की तरह काम चल रहा होता है इसलिए वो ज्यादा गर्म हो जाता है जो लोग व्यायाम या कसरत करते हैं वो भी मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं खासकर कसरत करते समय या उसके तुरंत बाद इसकी वजह यह है कि व्यायाम के दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है जिससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है साथ ही शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है और पसीना भी ज्यादा आता है इसी तरह भारी शरीर वाले लोग भी मच्छरों को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर आमतौर पर अधिक गर्मी पैदा करता है और वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तीसरी वजह आपकी बॉडी स्किन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी तय करते हैं कि मच्छर आपकी तरफ आएंगे या नहीं नीदरलैंड्स की वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों की ओर मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं उनकी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया की संरचना दूसरों से अलग थी उनकी त्वचा पर बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा थी लेकिन उनकी प्रजातियों की विविधता कम थी इसका एक कारण ये हो सकता है कि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया शरीर की खास गंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वास्तव में अगर त्वचा पर बैक्टीरिया ना हो तो इंसान के पसीने में लगभग कोई गंध नहीं होगी अब सवाल ये है कि मच्छर जब इंसान को काटते हैं तो असर अलग अलग होता है क्या जवाब है यस एक बड़ी रिसर्च में पता चला है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से संबंधित जीन्स इस बात से गहराई से जुड़े होते हैं कि मच्छर के काटने पर हमारा शरीर कैसी प्रतिक्रिया देगा दिलचस्प बात यह है कि यही जीन शरीर में होने वाली एलर्जी से जुड़े जीन्स से भी संबंध रखते हैं वैज्ञानिक फर्ग्यूसन कहते हैं कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं जबकि असल में उनका शरीर मच्छर के काटने पर अधिक प्रतिक्रिया दे रहा होता है दूसरी ओर कुछ लोगों को मच्छर अक्सर काटते हैं लेकिन उनके शरीर पर उसका असर बहुत कम नजर आता है तो अगली बार जब मच्छर आपके पास आए तो सोचिएगा कि आखिर कौन सा रीजन है कि मच्छर आपके पास ही ज्यादा आ रहे हैं

0: परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहतदा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी। इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप ते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 587-617-4696।
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
3: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
3: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222।
2: रेडियो सरसंगम 94.7 FM ते जी एक बार फिर स्वागत है। हुण तो लैके 10 बजे तक आप जी नाल साथ रहेगा, लेकिन अज दे प्रोग्राम विच जतिंदर पन्नू जी किसी कारण हाजिर नहीं हो सकते, सो अज एक विशेष प्रोग्राम आप जी की नज़र करांगे। सो प्रोग्राम दे विच जतिंदर पन्नू होरां दी अज हाजरी नहीं होवेगी जी, इस वास्ते एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है जी वह प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह होरां दे नाल वो पेश कर रहे हैं आप जी लिए।

0: जान जो मारे मोर मोर ते मैं मोरनी पे बैन लगा हुआ है क्या? कहते मोर मोरनी नहीं मोर नाचता है। मैं क्या मोरनी पे बैन लग गया हर एक गल तू ही कहना झाती मार के देख दे मोर नचता है।
1: अच्छा
0: जी। मोरनी नची जान दो
1: जी।
0: वो कहते कमाल का लिखा। उन्होंने कहा यार इसके लिए सिंगर कहते इसे पूछो कौन उनसे। मैं कहती आई थिंक आशा जी, आशा भोसले जी, आशा जी। इतने रहमान मेरे को लगा कहता विल यू राइट वन अनदर सॉन्ग फॉर मी, आई एम मेकिंग वन एल्बम एंड दैट एल्बम नेम इज वंदे मातरम एंड द सॉन्ग द फर्स्ट सॉन्ग हैज बीन डायरेक्टेड बाय भरत बाला। उसे ना वंदे मातरम मात तुझे सलाम। मैं कहता मैं लिखते दिया पर हूं तू आ जा रहा पर। वो पीछे गार्डन में गणपति जी का मूर्ति भी था रहमान गया। मैं कहते मेरे चेहरे ते आज साहिल लुधान में जरा तुम मेरे नजर आने दिया वा की गल कैन यू विल यू प्लीज फॉरगेट दैट फॉर सम टाइम। आई हैव वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम मुंबई ही अप्रोच्ड यू टू लिसन दिस पर्सन आई एम सुखविंदर सिंह आई एम दैट ओ यस वन सिंगर वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम मुंबई so you are the same one I said yes but one song can you write for me to main thaiya thaiya
1: acha
0: onu main kehta nu thaiya thaiya sunne te oh de idhar
1: ji
0: to main onu kya ki harmonium hai to kehta I don't have harmonium somehow he managed to arrange harmonium of his father
1: ji

94.7 FM, शाम के 5:04 हुए। It is 28 degrees in and around Calgary. Your weekly dose of entertainment, information and hit Desi Music program Sangeet. Like always, program mein anything and everything, news hain, khabrein hain, topic of the week hai, story of the week hai, and dheer sara music. And this is all blended in with your tarifein and tanqeedein. Un logon se hushyar rahein, un logon se careful rahein, jo aise logon ke bahut kareeb hain, jo aapko pasand nahin karte. Avoid people who are close to people who dislike you. कितनी मजे की बात है ना, ऐसे लोगों से दूर भागे, ऐसे लोगों को करीब ना आने दें जो उन लोगों के बहुत करीब हैं जो आपको डिसलाइक करते हैं. दे आर डेंजरस, दे आर सुपर डेंजरस. फ्रांसिस काफ्का ने एक बार कहा था कि मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं जब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी एक भेस बदलने वाला मेला है और मैंने अपने असल चेहरे के साथ इस मेले में शिरकत की. प्रोग्राम संगीत स्टूडियो, स्टूडियोज के नंबर 4037179047 आपको लेके जाना चाहता हूं आज के प्रोग्राम की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ. शाहरुख खान वीर ज़ारा मूवी से गाना है ये. शाहरुख खान एंड प्रीति ज़िंटा पे पिक्चराइज किया गया, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन थी मिट गई दूरी.

back, relax, and fasten your seatbelts. This is going to be a hell of a ride. एकदम चिकास, hey bro, चिकास बोले तो एकदम धांसू. धांसू बोले तो cool है. आपने नाम सुना होगा व्हाइट हाउस, आपने नाम सुना होगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन. इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं, जो पब्लिकली इलेक्टेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो भी आप उन्हें कह लें, वो वहां पर रहते हैं. एंड वो पूरे कंट्री, पूरी नेशन के लिए एक प्राइड होता है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसे भी डेमोक्रेसी के लिए एक सिग्नल कहा जाता है, एक सिंबल कहा जाता है. अब ऑटवा में, कनाडा में, जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल 100-150 साल पुरानी जगह है जहां पर वो रहते हैं, 24 ससेक्स ड्राइव, अब ये ऑफिशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल रेजिडेंस है और इट हैज बीन वेकेंट फॉर मेनी इयर्स नाउ. अच्छा, हुआ क्या? ये अच्छी भी चीज है इसमें और बुरी भी चीज है. अच्छी चीज ये है कि हमारे जो साउथ एशियन ममालिक है, वहां पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो टैक्स पेयर्स का पैसा अल्ले तल्ले उड़ाते हैं, जहाज खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े घर पैलेसेस बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं और मौज करते हैं, मजे करते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो अंधे होते हैं, बिल्कुल पागल होते हैं.

0: sensational, inspired by listeners. Sangeet Studio. Let your listening pleasure fly. Sangeet Studio with Sean.
1: Welcome back in Sangeet Studio. एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी नजर करता हूं जनाब, और वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि कभी कभी हमारा माइंडसेट नेगेटिव बन जाता है. जो कुछ हमारे पास होता है उसकी हमें परवाह नहीं होती, जो नहीं होता उसके लिए हम बावले हुए जा रहे होते हैं, पागल हुए जा रहे होते हैं. और ये एक ऐसा बिहेवियर है, साइकोलॉजी में से कहते हैं कि आपको इसका आइडिया नहीं होता. हम में से खुद यानी मुझे आइडिया नहीं होता कि कई बार मेरे पास कितनी जबरदस्त चीजें हैं, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास खाने पीने को है, गाड़ी है, घर है, टाइप की चीजें, लेकिन हर वक्त हम अनहैप्पी रहते हैं. हमें ये लगता है कि यार कुछ नहीं है जिंदगी में, कोई मजा नहीं है, कुछ कख नहीं हो रहा. इसी तरह से मैंने ये देखा है कि बहुत बार न्यू कैनेडियंस, खासतौर पर कैनेडा के बारे में भी सुनी सुनाई बातें इधर उधर से, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. नेगेटिव खबरें जो है ना बहुत तेजी से फैलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये न्यूज हो कि टोरंटो से एक फ्लाइट उड़ी और वो इंडिया या पाकिस्तान खैरियत से पहुंच गई, किसी ने ध्यान नहीं देना इस पे. लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ये खबर आए कि उस फ्लाइट को कुछ हो गया, नेगेटिव चीज हो, दुख हो, परेशानी हो उसके अंदर, तो हम बहुत ध्यान देते हैं. दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन इज, कि हमें जो नेगेटिव चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. अब बहुत सारे हमारे जो न्यू कैनेडियन है, रोजमर्रा आप डेली मिलते हैं लोगों से, आपको ये लगता है कि वो भी ये सुनी सुनाई बातें, यू नो, अपोजिशन की बातें. अपोजिशन जाहिर है हमेशा पुट डाउन करेगी. अगर अपोजिशन ये कहे कि सब कुछ ठीक है तो उनका तो जीरो चांस है ना आने का. उन्होंने हर चीज को पेंट करना है कि खराब है, बर्बाद हो गई है, किसी काम की नहीं है. जैसे अपोजिशन ये कहती है कि कनाडा जो है ना बर्बाद हो चुका है, कनाडा इज नॉट द सेम, एक जमाना होता था ये था, एक जमाना था ये था. जो घर 5 साल पहले, सीरियसली 4 साल 3 साल पहले, जो घर 7 लाख का था वो इस वक्त 5 का कोई खरीद नहीं रहा. अच्छा, जो बेसमेंट $1800 पे चढ़ती थी इस वक्त वो $800-900 में लेने वाला नहीं है. लेकिन अभी भी आप सुने कि अफोर्डेबिलिटी बड़ा मसला बना हुआ है, लो पीपल कैंट अफोर्ड हाउस, पीपल कैंट अफोर्ड हाउस, पीपल कैंट अफोर्ड हाउस. अच्छा, ये कंटिन्यू चीजें आपको रहती हैं, बिकॉज दिस इज हाउ अपोजिशन, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम आके जिंदगी आपकी बेहतर कर देंगे. और हम जो सिंपल सादा लोग होते हैं, वी फेल फॉर इट. हम हमेशा फॉल कर जाते हैं और हमें ये लगता है कि बाकी चीजें बहुत गड़बड़ है. क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े मुल्क आते हैं, मैक्सिको, कैनेडा और यूएस. यूएस तो बहुत ही बड़ा है. कैलिफोर्निया एक स्टेट, उसकी 50 स्टेट में से कैलिफोर्निया, उसकी इकोनॉमी कैनेडा से बड़ी है. अब ये तो बड़ी बहुत ही जायगेंटिक बात लगती है कि ओए माय गॉड, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इकोनॉमी बड़ी होती है, छोटी नहीं है. इंडिविजुअल की लाइफ कैसे है? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में रहने वाले जो स्कैंडिनेवियन का सिटीजन है, उसकी जिंदगी एक अमेरिकन से बहुत बेहतर है. जब आप सर्च करते हैं एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पब्लिक हेल्थ केयर, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चा होता है 2 साल की छुट्टियां मिलती हैं. अच्छा, इतनी सारी चीजें, देयर द हैप्पीएस्ट पीपल. दूसरी तरफ इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों के हालात आप देखें. फैक्ट्स कुछ और आपको कहते हैं. अब लेटेस्ट रैंकिंग आई है कि नॉर्थ अमेरिका, कैनेडा, अमेरिका और मैक्सिको के जो सेफेस्ट सिटीज की लिस्ट आई है, उसमें आप सोचें कि कैनेडा की आबादी कैलिफोर्निया के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद 5 सेफेस्ट सिटीज इन 3 मुल्कों में, 5 के 5 कनाडा में. बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है. द मोस्ट करंट नॉर्थ अमेरिकन सेफेस्ट रैंकिंग स्टिल प्लेस कनेडियन सिटीज एट द टॉप. कौन से हैं? क्यूबेक सिटी नंबर 1 पे है, ओकविल ओंटेरियो नंबर 2 पे है, बर्लिंगटन ओंटेरियो नंबर 3 पे है, ओटावा ओंटेरियो में है नंबर 4 है, ग्वेल्फ बी ओंटेरियो में. अच्छा, कैलगरी जो है वो इस रैंकिंग में टॉप 10 में है, बट नंबर 9 पे है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में यहां पर कुछ ये फायरिंग शायरिंग और इस तरह के जो होमसाइड केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं. बट बीइंग कनेडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि अमेरिका जो इतना बड़ा है, इतने शहर हैं, इतनी स्टेट्स हैं, इतना सारा कुछ है, रिचेस्ट कंट्री, बहुत पैसा, बल्ले बल्ले, शावा शावा, एक भी कंट्री टॉप 5 में नहीं है. मेरा तो ख्याल है टॉप 10 में भी नहीं है, शायद एक

0: संगीत से आपसे इजाजत का वक्त है. आई विश ऑल ऑफ यू लव, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड वेल्थ. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे. फिर आएंगे घर. खुदा लाया.
1: शुक्रिया. आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया. शुक्रिया.
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.